घर बैठन ग कुछ भी जाओ डाओ मरमचाबियासिन पाठ मथाला जो खोर मरमचाबियासिन पाठ पाठ मरम जी गए जंग में कुंभ बॉय में यू खरा